कभी ली भी लिया था आपके में उच्चा मने कल और में ली लबा और में ली लिया अंगसर चेरा नो भी ली भी लिया था आपके में उत्कले आंजी तंदे वो चेना गवसा मंगो लगा न्यू रुएनोर ने साफ़ ज़ेदी दाई गोसे ग्लो चिकंगे तेरे को बित के चेसे आयत मुद कसा न्यू मगु का लेंजिन सो को हाई पिगी के लेले ओए गासी ने तो हम गए गेरे कसे बागा मुआउन सो को हाई पिगी के लेले अमेचे गे बतुगे नंबर थ्री गैस हुए मात्रे ऐसी से कि वो 16,000 अमेचे भी तमन चेताए गोरां पिक तमन गोरां कोतो मगेलियानन पिक टेन किल्ला मुटु उनानुनो मात्रेस इसासा कुमेतिन्य ऑप्शन साइंग इतिन्य ऑप्शन अगेंगे नेबोगी यागुन पैसा की यागुन 16,000 इन्फैक्टे इचुतु कितोगो 16,000 सो की यागुन पैसा सीएल जिगे मात्रेस Matres is a kibo 16,000 Kenyan shillings. Namsi mwetene le miten. Star 274. Agitil hasha. Star